रंग खुशबू फूल महक ना ही देखी कोई सज धज, सूखे पत्ते सी भटक रही है जिंदगी जैसे कोरा कागज।

इश्क में अच्छा नहीं लेता रहे तू मेरा इम्तिहान, कहीं ऐसा ना हो जिस्म से निकल जाए ये जान।

0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
0: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।
2: हाय मैं हूँ आरजे ज्यू।
3: हेलो मैं हूँ आरजे दीवा।
4: हाय मैं हूँ आरजे असरा।
5: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चुनार 90.4 FM हर दिल।

हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464 1-800-180-7178 1-800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। जय बाबा बर्फानी।

Chinar Beats with Harshadeva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा। तब
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें।

0: अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4-4-6-4 1-8-0-0-1-8-0-7-1-7-8 1-8-0-0-1-8-0-7-1-9-9 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 जय बाबा बर्फानी।
1: Mixing in the house.

दोनों बेकरार हो जाए, रुके न रुके इश्क का आबशार हो जाए, न तुम रहो न हम रहे, इस कदर आ इस जहां के पार हो जाए।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: खामोशियाँ, जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था, लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे, जरूर बोलेंगे,
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर,
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

दिल को करार आ जाए जब भी आए सुहानी शाम, दबी यादें महक जाए जब भी आए सुहानी शाम। सुनिए सुहानी शाम सिर्फ और सिर्फ रेडियो चुनाव 90.4 FM।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिये लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।
3: मैं हूं आरजे ज्यूस। जब भी हम किसी नई जगह जाते हैं तो अक्सर उस एरिया के बारे में लोगों के जहन पे जो इम्प्रेशन सबसे पहले पड़ता है वो है वहाँ की ट्रैफिक मैनेजमेंट देखकर, कि वहाँ के लोग कितने डिसिप्लिन्ड और सिविलाइज्ड हैं। हम आए दिन देखते हैं कि एक्सीडेंट्स में ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन की वजह से कितनी जानें गंवानी पड़ती हैं। ट्रैफिक पुलिस और डिपार्टमेंट्स की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन हम पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ट्रैफिक रूल्स को रिलीजियसली फॉलो करें। रेडियो चुनार से हमारी यही गुजारिश है कि हम सब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें ताकि हमारा सफर खूबसूरत और सुहाना बन जाए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।
4: Chinar beats with Harsha Deva only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल्दी
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ। दीवाना है ये दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।
2: रेडियो चुनाव।

Assalamualaikum and a warm welcome to all of you. दोस्तों हर इस फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन रेडियो चुना 91.4 FM लो हाजिर है और चीज़ लेकर शो व्हाट्सएप.

0: दोस्तों एंजॉय कर रहे हैं मजेदार शो व्हाट्सअप। मैं हूं आपका साथी जैक्सियस रेडियो चनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी, और फॉलो शेयर सब्सक्राइब करें रेडियो चनार के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल्स को। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, एक्स पर जाकर सर्च करें रेडियो चनार 90.4 FM, हर दिल की धड़कन और जरों से धड़काए। डाउनलोड करें हमारा ऑफिशियल ऐप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। ऐप डाउनलोड करते ही आप हमें सुन पाएंगे लाइव दुनिया के किसी भी कोने में। आप लॉग इन भी कर सकते हैं www.radiochinar.com पर। हर दिल की धड़कन रेडियो चनार, मैं हूं जॉक्सिस, धड़काते रहो।
1: हाय, मैं हूं आरजे ज्यूस और आप सुन रहे हैं रेडियो चनार 90.4 FM।

0: bunch of zoos.
1: Kom aan, ja.
2: Radio Chennai. Radio Chennai. Weather update. Weather update.
3: रेडियो चेन्नई की हर इस फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन और हर इस धड़कन को धड़काते हैं आप और व्हाट्सएप शो में मस्तार शो व्हाट्सएप में ब्रदर आज का वेदर
4: तभी
2: रेडियो चेन्नई रेडियो रेडियो चेन्नई वेदर अपडेट वेदर अपडेट Radio Chennai. Radio Radio Chennai. Weather update. Weather update. Radio Chennai. Radio Radio Chennai. Weather update. Weather update. Radio Chennai. Radio Radio Chennai. Weather update. Weather update. रेडियो चेन्नई रेडियो रेडियो
3: चेन्नई और इस फ्रीक्वेंसी पर आज का वेदर क्या कहता है आइए बताते हैं ये है रेडियो चेन्नई 90.4 एफएम और आज का वेदर कहता है इट्स अवरकास्ट फॉर टुडे
2: रेडियो चेन्नई रेडियो रेडियो चेन्नई वेदर अपडेट
3: जी हां बीच में बारिश जो है थम जाएगी और दोपहर होते होते बारिश जो है फिर से स्टार्ट होगी तो

0: रुकना चलना छम छम बरसना, बारिश आज दिन भर यही करने वाली है।
1: वेदर अपडेट।
0: आज दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर रहेगा 29 डिग्री सेल्सियस। वही अभी की बात करें तो यूवी इंडेक्स वेरी वीक पर ह्यूमिडिटी 83%, विंड स्पीड 2 किलोमीटर्स पर आवर, विजिबिलिटी 4 किलोमीटर्स। आज का सनराइज हुआ 5:34 पर, आज का सनसेट होगा 7:42 पर। हारे हारे अब कोई ना करे, बट हम तो हाँ कहेंगे इस चीज को कि आपके दिलों की धड़कन रेडियो चुनाव हर दिल की धड़कन के साथ सिंक होनी चाहिए। 8899904904 इज द नंबर जो आपके दिलों के तार हमारे दिलों से जोड़ता है। हर दिल की धड़कन को जोरों से धड़काए, अपनी बात हम तक पहुंचाए। 8899904904 इज द नंबर। इंस्टाग्राम पर मिलूंगा ज़ूस द बैड बॉय ऑफ रेडियो के नाम से। और दिल की धड़कन रेडियो चला सिटी हिट मेरे यार।

बापू मैं जा रही हूँ, जो मेरी मर्जी है वो आपको पसंद नहीं। अब देश आजाद है तो आपकी बेटी क्यों नहीं? मुझे मेरा साथी मिल गया है, चिंता मत करना, मैं खुश रहूंगी। आपकी सुजाता।

हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या

आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-404-1807178 1-800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 जय बाबा बर्फानी।

शफक कहते हैं किरणों को रेस, और धनुक रेनबो, महताब चंद्रमा, घटाएं तो आपको मालूम है। शफक धनुक महताब घटाएं तारे नगमे बिजली फूल।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: जूस कौन आया
1: वायरल है तभी व्हाट्सएप पे
2: व्हाट्सएप पे
1: तभी
3: वायरल ऑन शो व्हाट्सएप
2: दोस्तों रेडियो चुनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पर वायरल ऑन व्हाट्सएप पे वायरल ऑन व्हाट्सएप एक ऐसा सेगमेंट जहां पर जो वायरल होता है व्हाट्सएप पर आ ही जाता है हम लाते हैं बुलाते हैं और आपको बताते हैं क्या रहा वायरल जो आया व्हाट्सएप पर व्हाट्सएप पे इस टाइम वायरल रहा मैसी एंड मैसी का एक पोस्टर जहां पर बताया जा रहा है ही इज ऑफिशियली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम फुटबॉल लेकिन सूत्रों का कहना है कि कोई भी ऐसा ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है अभी हाँ देयर आर अप्स एंड डाउन्स इन एवरी गेम कभी जीत कभी हार लेकिन मेरे यार जब तक ऑफिशियली कंफर्म ना हो अगर आप मैसी के फैन हैं तो प्लीज अपने धड़कनों को थाम कर रखिए

0: व्हाट्सएप पे।
1: फैंस का कहना है कि बहुत सारी हिट्स जो है मिली है मेसी की तरफ से, एंड इट्स अबाउट द हिंट्स बाय द सॉकर सुपरस्टार। अब क्या होगा अगला स्टेप वो तो हम भी देखेंगे अभी। जी हाँ, वायरल था तो व्हाट्सएप पर आ चुका है और फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन। मैं हूँ जागजी सरे।

0: है जूस।
1: कौन आया?
2: जूस जूस
3: नंबर जो आपके दिलों के तार हमारे दिलों से जोड़ता है। और इस फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन रेडियो चुनाव 90.4 एफएम श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। जी आपको बताते चले, मौसम खराब चलते यात्रा को जो है टेम्परली सस्पेंड किया गया है दोनों रूट से, यानी पहलगाम और बालतल रूट से। वेदर वार्निंग्स इशू की गई है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से, और साथ ही साथ हुकूमत जम्मू व कश्मीर का कहना है कि प्रिकॉशनरी मेजर्स जो है रखे गए हैं डिवोटीज को सेफ एंड सुरक्षित रखने के लिए, क्योंकि हेवी रेनफॉल्स की आशंका है, साथ ही साथ आशंका है फ्लैश फ्लड्स और लैंडस्लाइड्स की भी। एक बार पुष्टि होने के बाद ही यात्रा को रिज्यूम किया जाएगा। हर दिल की धड़कन रेडियो चला, मैं हूँ जागजू, सब बने रहें, सुनते रहें हर दिल की धड़कन को, धड़काते रहें।

0: Kom här, ja.
1: Dios.
2: और दिल की धड़कन है रेडियो चुनार और इस धड़कन को धड़काते हैं आप रेडियो चुनार की और इस फ्रीक्वेंसी पर मैं हूं जॉक्सियस आप सुन रहे हैं मस्तार शो व्हाट्सअप व्हाट्सअप शो का हिस्सा बने हैं जुनैद लिखते हैं जुनैद के सर इट्स माय फर्स्ट टाइम एंड मैसेज करने से पहले सब लिखते हैं इट्स माय फर्स्ट टाइम और मैं दिल से मानता हूं कि मैंने आज से पहले कभी भी रेडियो चुनार से कांटेक्ट नहीं किया आपकी बातें सुनता हूं तो दिल करता है कि आपसे बात करूं लेकिन सोचता हूं कैसे करूं भैया फ़ोन नंबर पे कॉल भी आती है हमारे तो दिल कॉल कर कॉल कीजिए और हमसे बताइए एंड थैंक यू सो मच जुनैद इस प्यार के लिए इस इज्जत अफजाई के लिए एंड मोर ओवर एनी थिंग दिल की धड़कन को धड़काने के लिए राजकुमार से जुड़े हैं लिखते हैं सर अभी घर नहीं आया जब भी घर आऊंगा सुपुर आकर आपसे जरूर मिलूंगा या लाइक

सुपर इज वेयर रेडियो चिनार इज लोकेटेड. तो आइए मेरे, यू आर मोस्ट वेलकम. थैंक यू सो मच. अफशाना हमारे साथ जुड़ी हैं, लिखती हैं, सर स्टूडेंट हूँ और सुनना चाहती हूँ कि आज का टॉपिक क्या है. देखिए आज का टॉपिक जो है थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव तो है हर रोज की तरह, बट थोड़ा सा हल्का सा हटके है. और अगर आप इन्फॉर्मेटिव इंटरेक्शंस के शौकीन हैं तो रेडियो चिनार पर आए दिन पॉडकास्ट इंटरेक्शंस इंटरव्यूज अपलोड होते रहते हैं. लॉग इन टू रेडियो चिनार .com या आप रेडियो चिनार सर्च कर सकते हैं फेसबुक यूट्यूब इंस्टाग्राम एक्स पर. रेडियो चिनार 90.4 FM हर जगह मिलेगा, हर पल आपके संग. थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए. आप भी अपनी बात हम तक पहुंचाएं. 8899 0499 0404 आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप या कर सकते हैं टेक्स्ट मैसेज. और दुनिया भर में छाई है इस टाइम शायरों की तादाद. जी हाँ, रील्स की वजह से कुछ लाइनें कुछ पंक्तियाँ जो लोगों तक पहुंच जाती हैं और ट्रेंड बन चुका है शायरी का. आज किसी से भी कुछ पूछो तो वहां से वो शेर व शायरी करने लगता है कि पहले उसने रस कहा, फिर गुल कहा, फिर ले कहा, और इस तरह से जालिम ने रसगुल्ले के टुकड़े कर दिए. वैसे ये जो मतलब फनी सा शेर है ये तेरे नाम मूवी का है, लेकिन ऐसी शायरी जो दिल को छूती है, ऐसी शायरी जो आपके दिल को बाती है. वैसे हमारा एक सेगमेंट दिल शायराना आप सुनते हैं, देखते हैं या उसे परफॉर्म करते हैं हमारे आरजे साहिल, जो कि आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर देख सकते हैं. और अगर आप शेर व शायरी का शौक रखते हैं तो कमेंट्स में अपनी शायरी भेज सकते हैं और वो भी वहां पर शामिल की जाएगी. क्या पता अगली बार पोएट्री आपने जो लिखी वो शामिल की जाए. बट पते की बात यह है कि आज हम शायरी के ट्रेंड्स की बात करने वाले हैं. क्या है असल में शायरी और कैसे एक इंसान शायर बनता है. आज शायरी ट्रेंड्स की बात हो रही है. आप भी अपना विचार का अचार हमें परोसे, हमें बताएं क्या है आपके दिल में वाणी जो आप चाहते हैं पूरी दुनिया को सुनाने. रेडियो चुनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पर मैं हूँ जॉक्सी, मजेदार शो व्हाट्सएप से रहो.

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा,
1: आएगी असरा हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464 1-800-180-7178 1-800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। जय बाबा बर्फानी।

0: Zeus.
1: What is frequency of North Kashmir up? Enjoy kar rahe hain Mastar Show. What's up? What's up show mein aaj baat ho rahi hai shayari trends ki aur shayar jo aaj phoot rahe hain Instagram se lekar Thread se lekar Facebook par. वही अगर हम देखें तो हर एक चीज के दो पहलू होते हैं हर कॉइन के दो सिक्के होते हैं और उनमें से ही है शायरी का भी कुछ रोल जहां पर शायरों को पहले प्लेटफॉर्म्स की जरूरत पड़ती है आज वही सोशल मीडिया पर शायर आए हाय लोगों के दिलो दिमाग और जबान पर छाए हुए हैं अब ये नहीं है कि जो मशहूर मारूफ शायर हैं उन्हीं को प्लेटफॉर्म मिलता है बस ये है कि अगर किसी की लिखावट बहुत ही ज़्यादा मजबूत है बहुत ही अच्छा लिखते हैं तो जाहिर सी बात है लोगों के दिलों पर राज जरूर करेंगे और एक बार जो बंदा वायरल

गल हो गया वो तो फिर छाया ही रहता है और बिना लिखे भी कुछ लोग अपने आप को शायर बना देते हैं दूसरों की लिखी शायरी पढ़कर। अब इसमें कुछ फैक्टर्स है कि शायरी कितनी रिलेवेंट है या दुख दर्द और मोहब्बत से जुड़ी हुई शायरी आप देखते हैं अक्सर लोगों के दिलो दिमाग और जबान पर छाई रहती है। वही अगर हम देखें तो अच्छा खासा रोल सोशल मीडिया का है, अच्छा खासा रोल लिखावट का है और अच्छा खासा रोल ऑडियंस का है, ऑडियंस जो बनाती भी है और बिगाड़ भी देती है। यहाँ पर हमारे साथ शादाब जुड़े हैं, लिखते हैं। शादाब कि भाई आपने जो स्टारिंग में शायरी बोली रसगुल्ले वाली, मुंह में रस छा गया। आप लोगों का प्यार है, बस ये कोशिश करते हैं कि हमारी कोशिश आपको पसंद आए और आपकी जब तारीफ सुनते हैं जब हमारी कोशिश तभी रंग लाती है जब आपके दिलों को बाती है। शादाब हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया। अगर आपके अंदर भी एक शायर पनप रहा है तो अपना शायराना अंदाज हम तक भी पहुंचाइए। रेडियो चनार पर सुनते रहिए मजदार शो व्हाट्सएप 8888-9904-904 इज द नंबर जो आपके दिलों के तार हमारे दिलों से जोड़ता है। मैं हूं जॉक्सूस, ये है मजदार शो व्हाट्सएप, मेरी जान से डे हुक्ड, धड़काते रहो।

थोड़ा थोड़ा मी पिया ओनु छूनु जी पिया, थोड़ा थोड़ा मी पिया ओनु छूनु जी पिया। मेरे कोलो लंगा फकीर एक कहना छड इश्क विच की पिया, मैं ओदी नी मन्नी गल वई मैं क्या अगे नू चल वई। फुल्लां दा लगी राज महल ओ तुरदा फिरदा ताज महल, ते ताज महल नू कोई नी छड़दा, ते ताज महल नू कोई नी छड़दा। जे मिलदा होवे मंगे तो, जे कपड़े दी कोई कीमत पुछे पुछे, फिर किसे नंगे

मैं उदा ना सी पुछना चाया ही उदे कुछ समझ ना आया ही मैं उदा ना सी पुछना चाया ही उदे कुछ समझ ना आया ही मैं शायर होके वी

फिर फिरागी ओदी ट्रेन है, फिरागी ओदी ट्रेन है, मेरे अंदर उठिया पेन है, ओ जद गल नाल ला के जान लगी, ओदी चेन च फस गई चेन है, उन्हें कोशिश की कढ़न दी, पर मैं इको दम उठ गया, जानी वे जानी वाला लॉकेट अद विचाल्यों टुट गया, लुट गया सब कुछ मेरा जो सी मेरे कोल, मैं सब तो वद अमीर सी जद ओ सी मेरे कोल, ना पता ना नंबर छड़ के चली, ना पता ना नंबर छड़ के चली, मैं खुद नू दिती झूठी तसली, के सर ना मिला के सिर मिलांगे, एक दूजे ते गिर मिलांगे, मैं कह के दिल समझा लिया, इंशाल्लाह फिर मिलांगे, इंशाल्लाह फिर मिलांगे, ओदे चारे पासे घुम होया, मैं ऐसा ओदे च गुम होया, उन्हें मत्था ते अगे कीता, पर मैथों ना मत्था चुम होया, सच चुमन तो मैनु याद आया, सच चुमन तो मैनु याद आया, मैं ऐदा नहीं जे खो सकदा, मैं पहले ही किसे होर दा, मैं नहीं ओदा हो सकदा, मैं नहीं

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपुरा तक,
2: वादी लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,

ऐसे साल निकाए उदा, उन्हूं कोई ना जाने, बस मेरे तो बगैर सत समुंदर पार एक ठंडा जा शहर, मैनू कोई ना पुछो कि ना है उदा, ऐसे साल निकाए उदा, ऐसे साल निकाए उदा, निकाए उदा।

साथ जीसस और आप सुन रहे हैं रेडियो चैनल 90.4 एफएम। रेडियो चैनल की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पर मजेदार शो व्हाट्सएप और व्हाट्सएप शो में अगली पेशकश टेक टॉक्स एंड बॉलीवुड न्यूज। जी हाँ दोस्तों, टेक टॉक टेक की वर्ल्ड से और साथ ही साथ बॉलीवुड की दुनिया से अलग अलग अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे। जरा सा इंतजार देते रहे प्यार, हर दिल की धड़कन को धड़काते रहो मेरे यार। मजेदार शो व्हाट्सएप जॉक्सिस के साथ सरे हट मेरी जान, धड़काते रहो।

0: ¿Cómo la veo?
1: Bollywood News. Frequency per Mazdar Show. WhatsApp Show ka segment. Bollywood News. बॉलीवुड न्यूज में आइए बात करते हैं सुपरस्टार सलमान खान की। हैट क्या पहन ली सलमान खान ने, लोग तो ट्रिप से बाहर ही नहीं निकल रहे। वही सुपरस्टार सलमान खान हैज वंस अगेन स्पार्क्ड क्यूरियोसिटी अमंग हिज फैंस विद अ क्रिप्टिक सोशल मीडिया पोस्ट। लेट नाइट पोस्ट में सलमान खान ने शेयर किया अपनी लीन लुक वाली पिक्चर्स, साथ में कैप्शन लिखा, आप लोगों की तबीयत कैसी है, यानी हाउ इज एवरीवन्स हेल्थ। कंट्रास्ट फैशनेबल लुक के साथ लोगों के दिलों पर राज करने वाले सलमान खान एक बार फिर से चार्म में है। अब जहां कंट्रोवर्सी चल रही कि ये एआई जनरेटेड लुक है, वही बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये जो लुक है उनकी नई मूवीज में दिखाई देगा। क्या सलमान खान वापस अपनी गद्दी लेने आ रहे हैं क्या बोल के, या जस्ट फैंस को क्यूरियस बना रहे हैं सबके भाई जान। यहाँ जानेंगे हम भी फिलहाल के लिए सलमान खान पर फिल्माए कुछ ट्रैक्स आपके लिए। मस्तार शो व्हाट्सएप, मैं हूँ जॉक्स।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दीवाना है ये दिल की बात साहिल के साथ। Only on Radio Chennai 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें।

जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464 1800-180-7178 1800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। जय बाबा बर्फानी।

टॉक्स में आइए आपको बताते हैं कि गैलेक्सी Z Fold 8 और Fold 8 Ultra व्हेन एप्पल इज रोलिंग इट्स फोल्डिंग डिवाइस टू द मार्केट. अब भैया सैमसंग के साथ और क्या बुरा हो सकता है, इनके स्पेक्स हो चुके हैं लीक. बताया जा रहा है कि जुलाई 22 मतलब 10 दिनों के बाद होने वाला था महान युद्ध, बट ये है कि लीक की वजह से अब इवेंट पर तो असर पड़ेगा ही. वैसे लीक कौन करता है कौन नहीं करता है ऑलरेडी पीपल नो, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज या बहुत सारे टेक रिव्यूअर्स जानते हैं कि क्या कुछ होने वाला है. उनके अपने सोर्स सूत्र ये तो बता ही देते हैं, लेकिन डायरेक्ट लीक्स मिल जाना बहुत बड़ी बात है. अब सैमसंग का ये है कि सैम हैंक मार देता है कभी कभी और ये 150 वाला एप्पल नहीं मारता. फिलहाल क्या होगा नेक्स्ट आप तक जरूर पहुंचाएंगे. हाल फिलहाल में आप सभी सुनने वालों के लिए लवली सा ट्रैक और इस फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन आप एंजॉय कर रहे हैं. मस्त हर शो व्हाट्सअप मैं हूँ जॉक्स सिटी हेक्ट धड़काते रहो.

0: Kom här, ja.
1: दोस्तों इसी ट्रैक के साथ आज के लिए इजाजत, अगली मुलाकात कल होगी और कल फिर से आपसे पूछने आ जाऊंगा मैं व्हाट्सएप कश्मीर। जी हाँ, बाय बाय बोलने का वक्त तो हो चला है लेकिन मेरा हाय बोलने का वक्त हो चला है आरजे दीवा का। आरजे दीवा आपसे जुड़ने वाली है कुछ ही देर में, शो का नाम रहेगा चुनार बीट्स। एंजॉय करने वाले हैं आप अगले दो घंटे बीट्स ऑन रिपीट रेडियो चुनार की हार्डेस्ट फ्रीक्वेंसी पर। दिस इज बाबा ज़ूस साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो चुनार सुनते रहिए क्योंकि यह हर दिल की धड़कन और इस धड़कन को धड़काते हैं आप। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, खुशबाश, मा सलामा।

जी पुकारा आपने, मैं चली आया ही अपनी पूरी वाइबो ट्राइब के साथ बातचीत करने। चुन और बीज की शुरुआत हुई है और शुरुआत में है, आप देख लीजिए जिस बात काफी बढ़ चुके हैं।

जी हाँ, बीट सुन रिपीट शो चुनाव बीट्स आप एंजॉय कर रहे हैं ओनली ऑन रेडियो चुनाव 90.4 FM। ढेर सारी बातें हो रही है, मस्ती मजाक, फन, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट के अलावा ढेर सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच रही है। एंड यस, बीट्स ऑन रिपीट है तो क्या कुछ है। देखिए बस मंडे और मंडे को ऐसा लगता है कि यार फंडे ही नहीं है, और सैटरडे को जो वो हमारा डोपामाइन काफ़ी ज़्यादा हाई होता है ना, तो अभी क्या है, क्या चीज़ है जो हमें रोक रही है। तो मैं बोल रही हूँ कि कोई चीज़ नहीं रोकती, रोकता हमारा ये जो है ना सेल्फ एस्टीम। हमें लगता है कि शायद से हम चार्ज कुछ ही दिनों पे होते हैं, हमें ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ों में एक्साइटमेंट होती है, बट आई बिलीव दैट कि हमारे काम में इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट है ना, अगर हम अपने काम को थोड़ा सा भी सीरियसली लेना ये नहीं होता कि हम मेंटली डिस्टर्ब रहे, इसलिए कि हम थोड़ा सीरियस हो जाए, हमें पता हो कि अगर हमारा काम सही है उसमें 100% देंगे तो इन्वॉल्व होने में एक अलग ही मजा, और हमें काम में मजा भी आने लगता है। फिर सुबह ये ना हम कहेंगे कि यार अच्छे सुंदर गेट ऑफिस, अब कौन जाएगा स्कूल, अब कौन काम करेगा। सो ये चीजें जो है ना, ये चीजें खत्म करने के लिए ही हमारा माइंडसेट हमने खुद बदलना पड़ता है। अब जैसे मैं हूँ, मेरा तो बदल चुका है क्योंकि मुझे सुबह सुबह ये एक्साइटमेंट होती है कि मुझे आपसे बातें करनी है। I am so overwhelmed, like I believe that कि यहाँ पर बात करना, आपकी सुनना, अपनी सुनाना एक अलग ही वाइब होती है। तभी तो मेरी ट्राइब काफ़ी स्मार्ट है, यानी कि मेरा साथ देती है बराबर दो बजे तक, और 2 बजे तक आप यही है, गाड़ी निकल पड़ी है, सवारी आप है। तो मुझे बताइए क्या कुछ चल रहा है आज, क्या है हमें बताना आपको, और आपको हमें बताना जज्बात, हालात और ख्याल।

Beats with Archie Diva, only on Radio Channel 90.4 FM.

बेस ऑन रिपीट शो चुनाव बीट्स आप एंजॉय कर रहे हैं ओनली ऑन रेडियो चुनाव 90.4 एफएम. ढेर सारी बातें हो रही हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट नेशनल हाईवे ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. सो क्या है नेशनल हाईवे का अपडेट, क्योंकि अगर हम देखें तो रिसेंटली बैड वेदर कंडीशंस के कारण जो है रोड का, बहुत सारे लोगों के दिमाग में मिसकंसेप्शन था कि शायद से रोड से अलो नहीं किया जाएगा. बट आई विल टेल यू दैट दोनों साइड से ट्रैफिक अलो किया जा रहा है. इट्स ओपन बट मोमेंट इज हैवीली रिस्ट्रिक्टेड एंड सब्जेक्ट टू वेदर कंडीशन. जो मैं ऑलरेडी आपको बोला कि बैड वेदर कंडीशंस के कारण कई कई जगहों पे आपको रोका जाता है और मूवमेंट जो है ज़्यादा मूवमेंट जो है उसे रोक दिया गया है. और ख़ासकर अगर हम देखें तो कारण वही है जो लैंडस्लाइड्स है, शूटिंग स्टोन्स है, उनके कारण नियर उधमपुर रामबन में थोड़ी दिक्कत आ रही है. तो उसका ख्याल रखिएगा, गाइडलाइंस देखिएगा कि कब हम जा सकते हैं आ सकते हैं. फिलहाल के लिए अलो तो किया जा रहा है बट स्टिल वी हैव टू बी केयरफुल. जो हमें गाइडलाइंस दी गई है उसके मुताबिक ही हम जाए और आए. और आपको बता दें कि जम्मू से श्रीनगर 7 से लेकर शाम के 12 तक आप जा सकते हैं. इट्स फॉर लाइट मोटर व्हीकल्स एंड इफ यू टॉक अबाउट हैवी मोटर व्हीकल, उन्हें सुबह से लेकर 7:30 तक ही अलो किया जाएगा. सुबह 7 से 7:30 शाम तक ही अलो किया जाएगा. ड्यू टू अमरनाथ जी यात्रा जो सस्पेंड हुई है कुछ देर के लिए क्योंकि बैड वेदर कंडीशन के कारण अमरनाथ जी यात्रा को भी रोक दिया गया है. बट स्टिल कुछ वो कहते हैं ना कि कुछ दिनों की ये बात है, होप्स है कि जल्दी ही ये यात्रा बहाल हो जाए. और इसीलिए गाइडलाइंस भी हमारे लिए डिफरेंट है अभी के लिए, क्योंकि लाइट मोटर व्हीकल्स, हैवी मोटर व्हीकल्स, उनका टाइमिंग थोड़ा डिफरेंट है. बाकी सीट बेल्ट लगाना, दैट्स इंपॉर्टेंट. और वो हमारी वो कहते हैं ना कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गलत जगह पे ओवरटेक करना गलत है. एंड जो हमारे पास ड्राइविंग SOPs दी गई है, जो हमने रोड से कैसे चलना है, कैसे आना है, उसका ख्याल रखिएगा. क्योंकि देखिए हमारा एक एफर्ट, छोटा सा एफर्ट किसी की ज़िंदगी भी बचा सकता है.

देखिए, हंस हम तब सकते हैं, खुल के हंस सकते हैं, जब हमें लगेगा कि हमने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम किया, यानी कि दिल से कोई आवाज़ आती है. सो बी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन. ये सिर्फ ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है कि वो SOPs या हमारी ख्याल हमारी सेफ्टी का ख्याल रखे, हमें खुद भी अपनी सेफ्टी का ख्याल रखना पड़ता है, कॉपरेट करना पड़ता है, तभी तो हम जीरो नहीं हीरो बनते. लाल के लिए आप मुझे बताइए कि क्या है एक्साइटिंग और कैसा वेदर आप इंजॉय कर रहे हैं इस वेदर को और कितना अच्छा लग रहा है. 8899 0904 WhatsApp कीजिए. शो चुनाव कैसे बन जाए.

Chinar Beats with Dhar Chediba, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464 1-800-180-7178 1-800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 जय बाबा बर्फानी।
1: Chinar beats with Archie Diva only on Radio Chinar 90.4 FM.

जी हाँ, खबर ऑनलाइन लेकर मैं हूँ हाजिर और बात किस बारे में हो रही है क्योंकि ऐसी मजान खबर विस्तार से तो क्या अच्छा खबर और किन पे अभी चर्चा हो रही है। तो अभी अगर हम सोशल मीडिया की बात करें तो एक

ऐसी मूवी की कास्ट जो सबको पसंद आ रही है और मूवी का इंतज़ार तो हर किसी को है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ रामायण के बारे में। रामायण अगर हम बात करें तो रामायण रणबीर कपूर एज लॉर्ड राम एंड साई पल्लवी एज माँ सीता, यश एज रावण, आई मीन इट्स मच अवेटेड मिथोलॉजिकल एपिक जहाँ पर हम वेट कर रहे हैं एक ट्रेलर का। आप देखिए मूवी का कितना ज़्यादा इंतज़ार हो रहा है। 24 जुलाई को ट्रेलर रिलीज़ होने जा रहा है एंड स्टार से बात हो रही थी कि उनका क्या है राय इस बारे में। सो स्पेशली अगर हम बात करें रणबीर कपूर को बहुत ही ज़्यादा प्रेज़ किया जा रहा है कि जो उनका रोल है रामायण में तो इट्स टोटली अमेजिंग। एंड कैसे लोग कह रहे हैं कि ये रोल कैसे इन पर सूट हो रहा है। एंड साई पल्लवी की जो काफ़ी ज़्यादा वो कहते हैं ना कि इंसान अपने रोल में इतना ज़्यादा गुल मिल जाता है। और उन्होंने ये भी कहा कि वो इस रोल को करते टाइम ये सोच रही थी वो कितनी ब्लेस्ड है, वो कितनी लकी है कि वो एज सीधा माँ का रोल कर रही है और इससे बढ़कर कोई भी अपॉर्चुनिटी उनके लिए नहीं हो सकती थी। So how much you are excited about this movie and especially trailer आ रहा है 24 जुलाई के दिन, मुझे बताएं। शो कैसा बन जाए। आप सुन रहे हॉट फ्रीक्वेंसी ऑफ कश्मीर रेडियो चुना 90.4 FM।

हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464 1-800-180-7178 1-800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। जय बाबा बर्फानी।

Chinar Beats ve Darje Diva only on Radio Chinar 90.4 FM.

Star Beats with Harshadeva, only on Radio Channel 90.4 FM.

Jeremy. Çınar Beats ve Darce Diva. Only on Radio Çınar 90.4 FM.

बीट्स ऑन रिपीट शो चुनार बीट्स आप एंजॉय कर रहे हो ऑन योर रेडियो चुनार 90.4 एफएम डी सारी बातें हो रही है एंड राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रूट सेफ्टी. देखिए वी आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट फूड सेफ्टी, फूड हमारा कैसा होना चाहिए, बट स्पेशली जब हम बात करते हैं फ्रूट्स की, हमें लगता है कि नेचुरल हम खाते हैं, फ्रूट्स आर वेरी गुड फॉर हेल्थ, पर अभी के लिए फ्रूट सेफ्टी का कंसर्न बढ़ चुका है. क्योंकि अगर हम देखें कुछ टाइम से हम देख रहे हैं कुछ मेजर कंसर्न्स है जो

टॉक्सिक पेस्टिसाइड्स जो फ्रूट्स में पाए गए और जिनकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान भी चली गई, उस पर आज हम बात कर रहे हैं। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट कि कैसे अगर हम देखें इल्लीगल जो राइप किया जाता है फ्रूट्स को, और वही फ्रूट्स को सीजन से पहले तैयार किया जाता है केमिकल्स से और वो बेचा जाता है, और फिर हम वो फ्रूट खाकर बीमार होते हैं। मोस्ट ऑफ जो हम देखें ना हेल्थ इश्यूज, अभी अगर हम कोई फ्रूट खाते तो अचानक से हम बीमार पड़ते हैं, और हमेशा हम कहते हैं कुछ तो गड़बड़ था। सो ऐसा मोस्टली होता है कि हमें अभी फ्रूट्स पहले मिलते हैं सीजन से, और कारण सबको पता है कि केमिकल्स इसमें है, फिर भी हम उसे कंज्यूम करते हैं एंड फिर बीमार पड़ते हैं, और फिर हम कहते हैं कि क्यों आखिर केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब फूड सेफ्टी अगर हम देखें, इसका कंसर्न भी देखा गया, और रिसेंटली अगर हम देखें बहुत सारी ऐसी फ्रूट का जांच हुआ, यानी कि कहाँ से आता है, जो हम देखें कि हमारी फूड सेफ्टी एजेंसीज है उन्होंने बराबर इस पर जांच की और देखा कि किन चीज़ों से ये हेल्थ रिस्क बढ़ रहा है, आखिर कौन सी सी चीज़ है जो इस्तेमाल की जा रही है, और क्यों लोग अब डर रहे फ्रूट्स खाने से, यानी कि इस चीज़ पे बात हुई और इसके बारे में जांच भी हुई। और अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स में ना केमिकल्स पाए गए, पेस्टिसाइड्स पाए गए और हाइजीन इश्यूज देखा गया, जिसके कारण लोग बीमार पड़ते हैं, और इस पे जो है कंसर्न बढ़ा और इस पे जांच भी हुई और बिल्कुल बैन लगी कुछ चीज़ों पे, और इस पे बराबर जांच हो रही है। बट ओवरऑल अगर हम देखें तो आखिर हमें किस हद तक सेफ्टी का खुद ख्याल रखना है, यानी कि हमने सावधान होना पड़ेगा। अगर हम फ्रूट खरीद रहे हैं, हमने उसकी जांच पड़ताल करनी है, हमने देखना है कि वो फ्रूट कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सही नहीं है। हमें खुद से समझना है कि इस फ्रूट में क्या चीज़ें हैं, अगर हम ले रहे हैं तो कट करके लीजिए, देखिए कि क्या कोई ऐसी चीज़ हमें दिख रही है कि जो सही नहीं है। बहुत सारी ऐसी अगर हम देखें टिप्स बता रहे हैं कि फ्रूट्स की पहचान हमें होनी चाहिए कि कौन सा फ्रूट सही है और कौन सा गलत, और ये हमने खुद ही सावधान रहना पड़ता है। और ज़रूरी है अगर हमें लगे कि कोई फ्रूट सही नहीं है और आपको लगता है कि कहीं से ये चीज़ गलत हो रही, तो उसके रिलेटेड हमने कंप्लेंट करनी पड़ेगी। तो कैसे करना है और क्यों ज़रूरी है हाइजीन एंड प्रोसेस्ड फूड का, अगर हम देखें फ्रूट्स का स्पेशली आज अगर हम देखें हेल्थ कंसर्न बढ़ रहा है, और क्या चीज़ इसमें पाई जाती है और कैसे ह्यूमन बॉडी में वो रिएक्ट करता है, बात हो रही है उस पर, आप भी शो का हिस्सा बन सकते हैं। 8899-0494 आप कॉल टेक्स व्हाट्सएप करके शो में शामिल हो सकते हैं। Yes, you can do it like that, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं, और हमारे खाने की जिम्मेदारी हमारी खुद की होती है। आप झटके तो हमने लगने नहीं चाहिए, क्योंकि हम इतने ज़्यादा कॉशियस है, अभी हमें पता है कि क्या सही है क्या गलत है, और बात हो रही है अभी शो का ऐसा बन सकते हैं। आप सुन रहे हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ कश्मीर रेडियो चुनाव 91.4 FM, क्योंकि यह है

बीस ऑन रिपीट शो चुनार बीस आप एंजॉय कर रहे हैं ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM. And we are talking about fruit safety and consumer, जो हम देख रहे हैं कि fruit safety कितना ज़रूरी consumer जो खाते fruits और उनका जो concern है about fruit वो कितना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम देखें recent ऐसे cases आए कि कुछ लोगों ने fruit खाया और सुबह वो उठ ही नहीं पाए और बहुत सारे लोगों का ये कहना था chemicals की वजह से उनकी जान चली गई, उन्होंने कंज्यूम किए थे fruits. So, क्या है तरीका, कैसे हम अपनी सेफ्टी का ख्याल रखेंगे जो हमने खुद से ही चीज़ें करनी है, स्पेशली वॉश हमने जो है ना वो रफली करना है, वो हमने सोक करना है फ्रूट्स को, वेजीज को. बेकिंग सोडा हम इस्तेमाल कर सकते हैं धोने के टाइम, और उससे क्या होता है कि हमें पता चलता है फ्रूट कैसा है और हमें ये समझ आता है कि फ्रूट में कोई केमिकल तो नहीं है. एंड ऑल्सो हमने जो अवॉइड करने हैं प्री कट फ्रूट्स जो हम बाय करते हैं, यानी स्पेशली जो कटे हुए होते, एक तो हो गया कि हम वही अपने सामने कट करवा रहे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट प्री कट यानी कि जो ऑलरेडी फ्रूट्स लगे हुए होते हैं जब हम उन्हें खरीदते हैं, जो ओपनली होते हैं, जबकि ये सुपर चिक आसान ओपनली आसान रेड एंड ब्रिटन जो फ्रूट होते हैं वो हम उठा के घर ले आते हैं विदाउट नोइंग कि इस फ्रूट पे कितने सारी धूल मिट्टी यानी कि कितने बैक्टीरिया कितनी सारी, वो कहते हैं ना कि अगर हम वो फ्रूट कंज्यूम करें, स्पेशली अगर आप वहीं पर कंज्यूम कर रहे हो, उससे भी हेल्थ इशूज़ बढ़ते हैं. यानी कि हमें पता नहीं होता है कि डस्ट फाइल्स कंटमिनेशन वो काफ़ी ज़्यादा उसका हो जाता है, या फिर हम इंस्पेक्ट कर सकते हैं जो पील है यानी कि परचेज कर सकते हैं फ्रूट, वो थिक होना चाहिए एंड हमें स्किन से पता चलता है फ्रूट कैसा है, अननेचुरल है या इसमें चीज़ें इंजेक्ट की गई है तभी ये जल्दी ही पक गया है, वो भी हम कर सकते हैं. तो इन चीज़ों का हम सब ने ख्याल रखना जो हम खुद से ही अवेयर हो सकते हैं, यानी कि कुछ ऐसी सेफ्टी है जो हमारे घर से स्टार्ट होती है, यानी कि हमें कुछ चीज़ों का पता है, एवरीबडी नोज दैट, उन चीज़ों को अवॉइड नहीं करना है. ट्राई करना कि अपनी हेल्थ के बारे में हम ख्याल रखें, फ्रूट्स भी अगर कंज्यूम कर रहे ये ध्यान हो कि कहीं वो फ्रूट हम पे बारी ना पड़ जाए. आप भी अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं 8899 0494 पर टेक्स्ट व्हाट्सएप कीजिए, शो चुनार बीट्स का हिस्सा बन जाइए.

0: हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-400-64-1800-180-7178 1-800-180-7199। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 जय बाबा बर्फानी।
1: Chinar Beats with Harshi Deepa, only on Radio Chinar 90.4 FM. Chinar Beats with Harshi Deepa, only on Radio Chinar 90.4 FM.

Beats on repeat, show Chunar Beats up. Enjoy कर रहे थे only on radio Chunar 90.4 FM. अब मैंने ये क्यों बोला कर रहे थे, क्योंकि show की जो timing है वो खत्म हो चुकी है और अभी ये वक्त आप अपनी favorite track सुन सकते हैं, यानी कि

शो म्यूज़िक ऑन डिमांड स्टार्ट हो चुका है और आज शो पे हम बात कर रहे थे फ्रूट सेफ्टी के बारे में, जो कंज्यूमर जो फ्रूट्स खाते हैं, जो कंज्यूम करते हैं, तो उस कितना ज़्यादा वो सिक्योर हैं और कितना ज़्यादा वो हमारी हेल्थ के लिए सही, यानी कि सेफ्टी का आज ख्याल रखा जाता है। स्पेशली हम कहते हैं कि फ्रूट्स है, बट यू नेवर नो उसमें केमिकल्स होते हैं, उन्हें अर्ली राइप किया जाता है, सो वो कंसर्न ज़रूरी है, उस सेफ्टी का ख्याल हमने रखना है। और शो भी इसी के साथ ख़त्म हो चुका है चनार बीस, बट मैं यही हूँ आपके साथ 2 बजे तक। आप अपने फेवरेट ट्रैक सुनने के लिए 8899904904 पर कॉल कीजिए, टेक्स्ट व्हाट्सएप करके आप शो में शामिल हो सकते हैं और अपने फेवरेट ट्रैक्स आप सुन सकते हैं हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ कश्मीर रेडियो चनार 90.4 FM पर, क्योंकि यह है दिल की धड़कन।

शो म्यूजिक ऑन डिमांड आप एंजॉय कर रहे हो ऑन योर रेडियो चुनाव 90.4 एफएम। एक रखी रिक्वेस्ट आई इस ट्रैक के लिए इश्क में, जी हाँ इश्क में हम तो आपके लिए बैक टू बैक सॉन्ग चलाते हैं। ये प्यार बरकरार रहना चाहिए। और आप क्या सुनना चाहते हैं, अपने लव्ड वंस के लिए कुछ डेडिकेट करना चाहते हैं, मुझे बताइए अभी शो में। रिक्वेस्ट कीजिए 8899904, टेक्स्ट व्हाट्सएप कीजिए, क्योंकि शो म्यूजिक ऑन डिमांड आप इंजॉय कर रहे हैं।

हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4-4-6-4 1-8-0-0-1-8-0-7-1-7-8 1-8-0-0-1-8-0-7-1-9-9 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। जय बाबा बर्फानी।

0: हाय मैं हूँ आरजे सियू।
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीबा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरा।
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 एफएम, हर दिल की धड़कन।
4: मुझे जी ये वाली मुन्नी चलेगी।

देखिए हम तो हथेली पर जान क्या प्यार आए हाय, बट क्या करे इस प्यार को और बढ़ाने के लिए असरा आ रही है, यानी कि हंगामा में फुल ऑन ड्रामा हो रहा है। तो एंजॉय कीजिए आप उनके साथ अपना बाकी का सफर, और मैं तो गलाऊंगी आपसे बात बातें करने। तो ख्याल रखिए अपना और सुनते रहे रेडियो 99.4 FM। ये है

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा।

के ख्वाब झूठे हो सकते हैं पर हमारे वादे नहीं। हमने सैटरडे को वादा किया था कि मैं वापस आऊंगी, 2 से 4 होगा हंगामा। So this is Monday and the show is on. शुरू हो चुका है हंगामा, जहाँ होता है ड्रामा, एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन। धीरे बोलती हूँ ताकि आपको याद रहे एंटरटेनमेंट इन्फॉर्मेशन क्या बजिंग है और लाइफ का ऐसा फिलोसॉफिकल टच जो सिर्फ और सिर्फ यही मिलता है। हमारी एक परंपरा है कि आते आते ही प्ले होता है कुछ खास, कुछ क्रेजी, और ये है चिल। क्या कहा है, डोंट डू जस्ट चिल। और देखिए मंडे है, बहुत सारे लोगों में वो मोटिवेशन नहीं होती है। मैं हमेशा बात करती हूँ एक ऐसे साइड की जो लोग यूजुअली इग्नोर करते रहे हैं कि मंडे मोटिवेशन इज अ रियल थिंग और नॉट। बट ये बात ज़रूरी है कि आज हम बहुत मोटिवेटेड हैं कि हम आपको तक सारी इंफॉर्मेशन, बैक टू बैक ट्रैक्स और रेडियो चिनार का प्यार पहुँचाएंगे। दिल से दिल मिलेंगे और विचार शेयर होंगे। विचारों से बढ़ता है प्यार, तभी तो हमें रेडियो सुनार। और देखिए अभी शो शुरू हुआ है, बहुत सारी चीजें हैं। सो स्टे ट्यून्ड टू द हॉरस फ्रीक्वेंसी बिकॉज इट्स हॉट।

वेलकम बैक टू शो हंगामा ओनली ऑन रेडियो सुनार 90.4 एफएम, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन। और शो शुरू होने के बाद ही फ्रेश हम आप तक पहुंच जाते हैं कि क्या ट्रेंडिंग है, लोग क्या देखना पसंद कर रहे हैं, और एक्चुअली क्या जो ट्रैक्स है, रील्स है, मीम्स है, यूट्यूब, एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह ट्रेंड कर रहे हैं। और आज का गाना ये है, और ये काफ़ी खूबसूरत गाना है। दिस इज़ नॉट द ओरिजिनल ओजी वर्जन, बट दिस इज़ अकॉस्टिक मिक्स एंड दिस इज़ सच अ ब्यूटिफुल ट्रैक। गाने का नाम है कंगना एंड इट इज अप्रोक्सीमेटली मोर देन 7 years ओल्डर सॉन्ग एंड ब्यूटिफुल सॉन्ग, ब्यूटिफुल लिरिक्स एंड क्यूट सी एनर्जी है इस सॉन्ग में। इनका कंगना इशारा कर रहा है और हमारा जो क्लॉक है वो इशारा कर रहा है कि कुछ ही ट्रैक के बाद हम आप तक पहुंचाएंगे कि रेलवे अपडेट, और उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें बैक टू बैक ट्रैक्स में। मोसरा सुनते रहिए रेडियो सुना 90.4 FM। एंजॉय कीजिए ये ट्रैक।

गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा इनिशिएटिव जो एक मिशन नहीं बल्कि एक इमोशन है। सफाई और साफ रहना हर एक को पसंद है और हम अपने घरों को साफ रखते रखते अपने माहौल को इतना गंदा कर देते हैं कि फिर हमें खुद ही शर्मिंदगी होती है। म्युनिसिपैलिटीज और सफाई कर्मचारी हर दिन अपने हाथों से हमारी डाली हुई गंदगी को साफ करते हैं ताकि हम एक साफ माहौल में सांस ले सके। कितना अच्छा होता कि अगर हम इन म्युनिसिपैलिटीज और सरकारी इदारों के साथ अपने माहौल को साफ सुथरा रखने में कोऑपरेट करते और इस बात का सबूत देते दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ आवर सोसाइटी। तो आइए स्वच्छ भारत मिशन में हम अपना योगदान देकर इस मिशन को कामयाब बनाए, क्योंकि स्वच्छता ही सेवा है। हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-800-180-7178 1-800-180-7199। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। जय बाबा बर्फानी।

हाय मैं मसरूर, आप सुन रहे हैं रेडियो सुनार 90.4 एफएम एंड दिस इज द टाइम फॉर रेलवे अपडेट। शो चल रहा है हंगामा, मैं हूँ अर्जय असरा और आज की अपडेट ये है कि हर कोई जो रेगुलर ट्रेन्स है, जो रेगुलर लोकल ड्यूरेटेड ट्रेन्स हैं, वो अपने टाइम पर पहुँची हैं अभी तक, और जो इसके आगे आफ्टरनून वाली है, इवनिंग वाली है, वो भी अपने रेगुलर टाइम पर पहुँचेंगी। डिपार्चर होंगी, अराइवल होगा, एवरीथिंग ऑन पॉइंट एंड यू कैन अवेल द टाइमिंग्स थ्रू समर टाइम टेबल ऑफ कश्मीरी रेलवे लिंक, दैट इज़ बानीहाल, बड़गाम, बारामूला एंड एवरीथिंग। जो भी ट्रेन्स है उनके बारे में आपको पता चल सकता है फ्रॉम एन ऐप ऑल्सो, दैट इज रेल वन। रेल वन एक ऑफिशियल इंडियन रेलवे ऐप से जहाँ पे सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर रेलवे लिंक के बारे में नहीं बल्कि पूरे इंडियन रेलवेज के बारे में आपको नॉलेज मिल सकती है, अपडेट्स मिल सकती है, जो ट्रेन्स बिटवीन स्टेशंस है, लाइव लोकेशन ऑफ द ट्रेन, और अगर आप ट्रेन में बैठे हैं तो GPS ऑन करके आपको ये भी पता चल सकता है कि एक्यूरेटली मैं अभी कहाँ हूँ। एंड इट्स वेरी नेसेसरी कि आप अपने सामान का, अपने आप का और अपनी टाइमिंग्स और शेड्यूल का ख्याल रखें और इस बात को समझें कि आपका ज़रूरी है कि आप अपने रिस्पेक्टिव स्टेशंस पर 10-15 मिनट पहले पहुँचे ताकि आपका जो भी शेड्यूल है वो सही रह पाए। समझा करो, देखिए समझने की ज़रूरत है बिकॉज वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ दिस सोसाइटी एंड वी हैव टू मेक श्योर दैट वी रिमेन वन। सो ज़रूरी है कि आप अपना ख्याल रखें, अपने रिस्पेक्टिव स्टेशन पर 10-15 मिनट पहले पहुँचे एंड वाइल बींग ऑन द स्टेशन फॉलो जो भी रूल्स आपको फॉलो करने को बोलते हैं वो होना चाहिए, बिकॉज देर इज़ आई हैव नोटिस दिस बिकॉज आई ट्रेवल थ्रू ट्रेन अलॉट, सो आई हैव नोटिस दिस फैक्ट दैट जब भी पैसेंजर्स वेट कर रहे होते हैं ऑन द प्लेटफॉर्म और जो ट्रेन आ रही होती है अराइवल के लिए या डिपार्चर के लिए, ट्रेन जा रही होती है, आ रही होती है, यू हैव टू मेक श्योर दैट जो प्रोटेक्टिव लाइन होती है उस एरिया से पीछे रहना होता है। यू हैव टू बी इन दैट प्रोटेक्टिव एरिया, दैट प्रोटेक्टिव गेयर। यू डू नॉट हैव टू बी कि आप इतना क्लोज रहें बिकॉज वॉट इफ कोई कैजुअलिटी हो जाए, वॉट इफ समथिंग हैपन, सो यू हैव टू बी अवे फ्रॉम द ट्रेन दैट इज अराइविंग और डिपार्चरिंग। तो ये समझिए, बी अ गुड सिटीजन, बी अ गुड पर्सन फॉर योर सेल्फ, फॉर द पीपल हु आर अराउंड यू। मैं हूँ असरा, सुनते रहिए रेडियो सुनार 90.4 FM, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन।

देखिए बाबू सेहत के लिए हानिकारक है या नहीं है, या जो पेरेंट्स होते हैं स्पेशली जो ब्राउन इंडियन पेरेंट्स होते हैं, देसी पेरेंट्स होते हैं, भाई हमारा अपना एक जुगाड़ है जिंदगी जीने का। और आज हमारा जो स्पेसिफिक टॉपिक रहता है हर दिन का, आज हम इसी बारे में बात करेंगे। तो आज बात हो रही है देसी पेरेंट्स के बारे में, और स्पेशली जो एक पोर्ट्रे की जाती है इमेज हॉलीवुड सीरीज में, हॉलीवुड मूवीज में, जो इंडियन पेरेंट्स की क्या स्ट्रिक्ट हैं, लीनियंट है, क्या है ये राज, वो आप तक पहुंचाएंगे। पर कुछ ही ट्रैक से बात शुरू हो चुका है टॉपिक, शो तो कब का शुरू हो चुका है, और आपके साथ बराबर चार तक बने रहेंगे। फिलहाल इंजॉय कीजिए बैक टू बैक ट्रैक्स ओनली ऑन रेडियो सुनार 90.4 FM, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन।

0: हाय मैं हूँ आरजे सियूज।
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीबा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरा।
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 FM हर दिल।

0: आरजे असरा के साथ
1: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 एफएम।
0: वेलकम बैक टू शो हंगामा ओनली ऑन रेडियो सुनार 90.4 एफएम, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन। और जैसे कि आज का टॉपिक हमारा है देसी पेरेंट्स, यानी कि हमारे पेरेंट्स किस तरह के हैं और यूजुअली लाइक यू नो जेनेरिक आइडिया क्या है फॉर द वर्ल्ड एंड स्पेशली बिकॉज ऑफ द सोसाइटी, जो साउथ एशियन बैकग्राउंड्स के पेरेंट्स होते हैं उनका क्या सीन है। स्पेशली कहा जाता है कि जो ब्राउन पेरेंट्स होते हैं, जो देसी पेरेंट्स होते हैं, उन्हें प्यार तो बहुत होता है बच्चों से, बट एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं और काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं और उस वजह से वो थोड़े डिस्टेंट भी होते हैं अपने बच्चों से, बट जो प्यार है वो बिल्कुल नहीं होता। एक डीप डिवोशन होती है अपने बच्चों के लिए, एक डीप अफेक्शन होती है बच्चों के लिए, बट जब इंटरोगेशन

का टाइम आए और प्रिवेसी का टाइम आए वो जम के होता है, यानी प्रिवेसी जो है एक ब्राउन हाउस होल्ड में अलाउड नहीं होती। अब अलाउड का मतलब क्या है कि हमारे पेरेंट्स को हमेशा लगा डर लगा रहता है कि हमारा बच्चा कुछ गलत ना कर दे और वो गलत गाइडेंस की वजह से कुछ गलत ना कर दे अपनी लाइफ में, फ्रेंड्स के साथ या कुछ भी ऐसा। सो उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए वो ओवरली प्रोटेक्टिव हो जाते हैं एंड दिस इज हर घर का हाल, यानी कि घर घर की कहानी यही है कि बॉस जो पेरेंट्स है वो थोड़े एक्स्ट्रा स्ट्रिक्ट हैं और आपको हर चीज़ पर सवाल करते हैं कि आपके फ्रेंड्स कौन है, आप कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कितने बजे वापस आएंगे, हर बात पे फोन होता है, हर बात पे एक कहते हैं ना वो कैरेक्टर बिल्ड करने के लिए, आपका कैरेक्टर आपको सही इंसान बनाने के लिए उनके तरीके थोड़े डिफरेंट हैं, थोड़े स्ट्रिक्ट हैं एज कम्पेयर टू फॉरेन पेरेंट्स, एज कम्पेयर टू पेरेंट्स इफ वी कंपेयर देम विद द फॉरेन पेरेंट्स, यूरोपियन पेरेंट्स के साथ, तो ये चीज़ें थोड़ी डिफरेंट रहती हैं। मगर प्यार मोहब्बत अगर बच्चे को एक कहते हैं ना वो जख्म भी आए या फीवर या बुखार हो जाए या कुछ भी ऐसा हो जाए कि कुछ नेगेटिव लाइफ में जा रहा हो, तो सबसे पहले पेरेंट्स ही आते हैं उस बच्चे को बचाने। अब देखिए और भी बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स हैं, जैसे एकेडमिक पर्सपेक्टिव है, करियर पर्सपेक्टिव है, लाइफ, लव, शादी, बहुत कुछ है भाई, शादी तो है बट धीरे धीरे सब चीज़ों के बारे में बात होगी। अभी के लिए एंजॉय कीजिए एक बहुत ही खूबसूरत सा रिमिक्स लेके, पहला पहला प्यार, दिस इज़ वन ऑफ द रिमिक्स दैट इज़ गोइंग ट्रेंडिंग अभी इंस्टाग्राम पे, पीपल आर मेकिंग डांस रील्स, मेकअप ट्रांजिशंस, ओह माय गॉड सो गॉर्जियस। देखिए इन्फॉर्मेशन तो होता है बट एंटरटेनमेंट का डोज भी ज़रूरी है और ये अभी का जो लाइक द जेंजीज, यू कॉल इट जेंजीज, न्यू जनरेशन और द इन्फ्लुएंसर जेंजीज, दे स्पेसिफिकली लव द रिमिक्स ऑफ ओजी सॉन्ग्स। और सिर्फ ये नहीं बल्कि एक और ओजी सॉन्ग है जो काफ़ी पसंद है लोगों को। The new generation would love these OG remixes, but it's here right now because Radio Sunar pe kya nahi milta bas. Main wasra sunte rahiye Radio Sunar 90.4 FM, kyunki ye hai har dil ki dhadkan.

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो

वेलकम बैक टू शो हंगामा ओनली ऑन रेडियो सुनार 90.4 FM, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन। और जैसे कि अभी हम देसी ब्राउन पेरेंट्स की बात कर रहे हैं, साउथ एशियन पेरेंट्स की बात कर रहे हैं, और स्पेशली अगर इंडियन पेरेंट्स की बात करें तो देर इज लाइक कॉन्सेप्ट ऑफ करियर, लाइक मैक्सिमम जो पेरेंट्स हैं वो आपको डॉक्टर, इंजीनियर या बैंक या लॉयर, जो मेन स्ट्रीम चीज़ें हैं उनमें जाने को फोर्स करते हैं या रिकमेंड करते हैं, बट वो ये बात नहीं समझते कि देर इज सो मच मोर इन द फील्ड ऑफ करियर्स। सो ये देखा गया है कि आज जो इंडियन पेरेंट्स हैं वो स्पेशली अपने बच्चों को चाहते हैं कि शायद सिर्फ इसी में मे बी लैक ऑफ एक्सपोजर या लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ उनके वक्त पे नहीं होगी, बट अभी की अगर बात करें देर इज़ सो मच मोर। सो कुछ पेरेंट्स ये समझना नहीं चाहते और कुछ पेरेंट्स ये समझ नहीं पाते हैं बिकॉज उनके आसपास उतना एक्सपोजर नहीं होता। और ख़ासकर ये कैसे हम बोल सकते हैं कि एक जो आपके ख़ानदान में सबसे अच्छा जिसने परफॉर्म किया होगा कज़न, आपको उसके साथ कंपेयर किया जाता है, ये एक और निशानी है ब्राउन पेरेंट्स की। और देखिए, शर्मा जी का बेटा ये कर रहा है, शर्मा जी की बेटी ये कर रही है, सो दिस कंपैरिजन इज वेरी डीप रूटेड और कहीं ना कहीं वो सोसाइटी की वजह से आता है कि हम लाइक एक फेयर ऑफ जजमेंट होता है हमारे पेरेंट्स के दिमाग के अंदर कि हमें लोग जज करेंगे, और वो उनकी भी गलती नहीं है बिकॉज सोसाइटी जिस तरह की होती है तो कहीं ना कहीं आप पर भी वो असर पड़ता है। टुमारो यू हैव टू फेस द सोसाइटी, एंड एज अ सोसाइटी यही एक रीज़न है, यही एक लूप होल है जहाँ पर हमें ये चीज़ें फिक्स करनी चाहिए कि एक पेरेंट अपने बच्चे को कुछ ज़बरदस्ती करवाने का फोर्स ना करें। और ये ज़रूरी है कि हम सबके लिए, पूरी सोसाइटी में जो कुछ कोई भी लोग रहते हैं उनके लिए एक सेफ एनवायरनमेंट बनाए, अपने लिए, उनके बच्चों के लिए, फॉर द पेरेंट्स इवन। और स्पेशली अगर देखिए, दिस इज़ समथिंग दैट जो नोक जोक होती रहती है या कोई ऐसी चीज़ जो एक्चुअली यू नो जो ठीक कर सकता है, बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ और सिर्फ ब्राउन पेरेंट्स में मिलती है, वो हो गया वो एक्सेसिव केयर करना। माँ बाप बच्चे का टेंशन हो कोई, या बच्चे का एग्जाम हो कोई, बच्चे का काम हो कोई, तो माँ बाप जो इंडियन पेरेंट्स हैं, जो देसी पेरेंट्स हैं, वो रात भर नहीं सोते कि भाई सुबह में शुरिस एग्जाम में छनिंद्री माँ क्या खबर क्या कर। तो दीज आर द थिंग्स ओनली फाउंड इन इंडियन पेरेंट्स बिकॉज दे आर मोर कनेक्टेड, एंड इट्स नॉट जस्ट मी हु इज सेइंग इट, इट इज द रिसर्च, इट्स द सेंसस दैट सेज कि जो फॉरेन कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज में, दे मेक द किड्स मूव आउट एट द एज ऑफ 18, बट जो कश्मीर है या इंडियन पेरेंट्स हैं वो ऐसा नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि वो हमेशा अपने बच्चों का वो ख्याल रखे, चाहे एक बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए, अपने पेरेंट्स के लिए वो छोटा सा बच्चा ही रहता है। तो बेसिकली जब भी किसी घर में कोई बच्चा पैदा होता है, उसे रेज़ किया जाता है, उसे सोसाइटल चीज़ें सिखाई जाती हैं, जीने का तरीका सिखाया जाता है, बोलना, हंसना, खेलना, चलना, एक्सप्रेस करना, तो उस पेरेंट के लिए, स्पेशली अगर हम ब्राउन पेरेंट्स की बात करें, तो उनके लिए वो पूरी की पूरी दुनिया होती है। वो सिर्फ एक बच्चा नहीं होता, वो एक कहते हैं ना कि वो उनकी जीने की एक इच्छा होती है, कल को व्हाट दे लुक अप टू, दैट इज़ देयर किड्स, दे वॉन्ट टू लिव विद देयर किड्स, दे डू नॉट वॉन्ट टू अबैंडन देम और मेक देम मूव आउट, ताकि वो खुद अपने आप फिगर आउट करें कि वो क्या करना चाहते हैं। बल्कि इंडियन पेरेंट्स लव देयर किड्स सो मच दैट दे वांट टू लिव विद देम फॉरएवर। दुनिया तू ही रे। मैं हूं अस्टा, सुनते रहिए रेडियो सुनार, और कुछ ही ट्रैक्स के बाद हम बात करने जा रहे हैं द हॉलीवुड एंड द ब्राउन पेरेंट मिक्स। मैं हूं अस्टा, सुनते रहिए रेडियो सुनार 90.4 FM, मैं बस यूं के योर युवा बसाई।

हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान

रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464 1-800-180-7178 1-800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। जय बाबा बर्फानी।

वेलकम बैक टू शो हंगामा ओनली ऑन रेडियो सुनार 90.4 FM. ये है दिल की धड़कन. और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि कुछ ही ट्रैक के बाद हम बात करेंगे कि सोशल मीडिया पे जो हमें दिखता है या हॉलीवुड मूवीज़ में, हॉलीवुड जो सीरीज़ होती हैं उनमें जो ब्राउन पेरेंट्स का, देसी पेरेंट्स का क्या डिपिक्शन होता है. यूजुअली जो मतलब एक स्टीरियोटिपिकल वे जो दिखाते हैं दैट इज़ कि कोई एक जो बहुत पढ़ाकू, एक नर्ड, IT डॉक्टर जो एक बहुत ही क्रेजी एक्सेंट के साथ बात करता है. और वैसा एक्सेंट हमारा अंग्रेजी में होता नहीं है बट फिर भी वो दिखाते हैं. व्हाई? बिकॉज देयर इज़ अ स्टीरियोटाइप. एंड वो स्टीरियोटाइप बहुत सारे जो व्हाट वी कॉल इट, जो बहुत सारे जो मूवीज़ हैं, अभी नई जो मूवीज़ हैं उनमें वो अलग से दिखाया गया है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता. बल्कि जो साउथ एशियन कैरेक्टर्स हैं वो काफ़ी स्मार्ट होते हैं. साउथ एशियन कैरेक्टर्स एक्चुअली अगर देखा जाए जो इंडियन कैरेक्टर्स दिखाते हैं, जो देसी कैरेक्टर्स दिखाते हैं या पेरेंट्स दिखाते हैं स्पेशली, तो वो सिर्फ स्ट्रिक्ट नहीं होते, वो सिर्फ एक एक्सेंट के साथ बात नहीं करते. बट एक चीज़ ज़रूर है कि एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ दर्शाई है. चाहे हम नेवर हैव आई एवर के बारे में बात करें, मिस मार्वल के बारे में, मंकी मैन, ये जो बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं जिसमें एक्चुअली मल्टी डायमेंशनल कैरेक्टर्स हैं रिलेटेड टू साउथ एशियंस जो क्रिएटर्स हैं. उनको सिर्फ ये नहीं दिखाया गया है कि वो सिर्फ एक पढ़ाकू हो सकते हैं या वो अपनी एक नई दुनिया ढूंढ लेते हैं जब वो किसी पराए देश में जाते हैं, इंडिया को छोड़ के बाहर जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता. बल्कि ऐसा एक कैरेक्टर बिल्डिंग दिखाई जा रही है नई मूवीज़ में, नई हॉलीवुड मूवीज़ में. सो दैट्स अ रियली गुड थिंग. बट जो पुरानी हॉलीवुड मूवीज़ हैं, स्पेशली अगर हम बात करें द पार्टी की, दैट्स अ मूवी. एंड उस पर एक दिखाया गया है कि कैसे कोई भी अगर ब्राउन पर्सन है, कोई भी अगर जिसका स्किन कलर लिटिल डार्क शेड जो है, तो उसको बता दिया जाता है कि ये इंडियन है. बट वैसा नहीं है. और ये स्टीरियोटाइप्स धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं एंड दैट्स अ रियली गुड थिंग, लाइक एन आर्ट एंड लाइक एन रिफॉर्म. बेसिकली जब तक हम इस बारे में बात नहीं करेंगे, जब तक हम इस बारे में आवाज़ नहीं उठाएंगे, तो तब तक कौन सुनेगा. और दूसरी चीज़ ये भी है कि हमें ऐसी चीज़ें प्रमोट नहीं करनी चाहिए जिस पे एक इंडियन स्टीरियोटिपिकल कोई कैरेक्टर हो. एंड वी शुड नॉट रोमांटिसाइज़. और हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से हम खुद को डिग्रेड करें. मैं हूँ असरा, सुनते रहिए रेडियो सुनार. एंड दिस वॉज ऑल अबाउट द टॉपिक. और अगर आप कुछ कहना चाहते हैं कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है और क्या चीज़ें चेंज हो सकती हैं, क्या चीज़ें बेहतर हैं ऑलरेडी, उस बारे में बात कर सकते हैं आप. 8899049904 इज नंबर यू कैन कॉल, मैसेज, टेक्स्ट, व्हाट्सएप. मैं वस्त्र सुनते रहिए रेडियो सुनार. मैं बस यूं गई और यूं वापस आई.

0: हाय मैं हूँ आरजे ज्यूस।
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीवा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरा।
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 FM हर दिल की।

0: से ज्यादा दे दूं।
1: हाय मैं हूं असरा और आप सुन रहे हैं रेडियो सुनार द हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉर्थ कश्मीर। और अभी शुरू हो चुका है गेम ऑन। अब गेम ऑन क्या है भाई? गेम ऑन क्या है? गेम ऑन है स्पोर्ट्स अपडेट का टाइम।
0: वे चुन्नी मेरी रंग दे ललारिया मेरे यार दी गड्डी दे नाल दी।
1: स्पोर्ट्स अपडेट यानी कि लोकल नेशनल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स अपडेट, कुछ ऐसे फैक्ट स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो आप कहीं और नहीं सुनते या उनके बारे में बात नहीं होती। मैं हूं असरा, सुन रही है रेडियो सुनार और कुछ ही ट्रैक से बाद हम बात करेंगे आज की अपडेट क्या है। मैं हूं असरा, सुन रही है रेडियो सुनार।

to Radio Chennai 90.4 FM. Game on with RJ Asra. Only on Radio Chennai 90.4. Welcome back to Show Hangama and segment Game On. गेम ऑन में हम बात करते हैं स्पोर्ट्स के बारे में. एंड देखिए बहुत कुछ है बात करने को. स्पोर्ट्स एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे हर दिन कुछ ना कुछ होता है, चाहे हम कश्मीर की बात करें या हम नेशनल लेवल की बात करें या वर्ल्ड की बात करें. बट अभी वर्ल्ड में क्या हो रहा है, दैट इज़ द बिगेस्ट थिंग. जहाँ लोकल हो, नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, हर जगह इसी की धूम है. दैट इज़ फीफा वर्ल्ड कप फिनाले 2026. और फिनाले था कल, एंड इट वाज बिटवीन स्पेन एंड अर्जेंटीना. एंड गेस व्हाट, स्पेन ने जीत लिया. एंड आई नो आपको मालूम होगा, बट ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस बारे में सेलिब्रेट करें इस चीज़ को, इस बारे में बात हो. एंड मोर ओवर देखिए, सिर्फ और सिर्फ मैच नहीं देख रहे थे. अब मेरी बात करें तो मैं तो शकीरा का डांस देख रही थी. बस क्या क्रेजी है वो औरत. द गॉर्जियस, द टैलेंटेड, द वन एंड ओनली शकीरा, दैट गिव्स दैट एक्चुअल वाइब कि भाई कुछ तो हो रहा है. फीफा है, वर्ल्ड कप है, एंड लेट्स गो.

Let's go. So this is Spain is the world champion right now for the football, and it is going viral everywhere. It's going trending, and moreover, जो भी supporters थे Spain के, they are so happy, and so am I. मैं हूँ अश्रा, सुनते रहिए रेडियो सिटार 90.4 FM. अभी कुछ देर बाकी, आप बताइए आपका क्या ख्याल है जिंदगी के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में, हंगामे के बारे में, जो भी आप कहना चाहते हैं. 8899904904 is the number you can call, message, text, WhatsApp. मैं हूँ अश्रा, सुनते रहिए रेडियो सिटार 90.4 FM. ये है हर दिल की धड़कन.

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन धड़कन धड़कन।

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा।
1: आएगी असरा हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-404-1800-7178 1-800-1800-7199। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। जय बाबा बर्फानी।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ। दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

Çınar Beats ve Darce Diva, only on Radio Çınar 90.4 FM.

0: खामोशियाँ, जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था, लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे, जरूर बोलेंगे,
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर,
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादी लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464-1800-180-7178 1-800-180-7199

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।
2: The game is on. Tune into Radio Chennai 90.4 FM. Game on with RJ Asra. Only on Radio Chennai 90.4 FM. 4 FM.

0: मैं हूं आरजे साहिल मुजफ्फर। आजकल हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ी बीमारी फैल चुकी है, जिसको हम ड्रग एडिक्शन या ड्रग अब्यूज कहते हैं। जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स की जिंदगी खतरे में है, क्योंकि वो ड्रग एडिक्शन का शिकार हो चुके हैं। ये हम सब की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे नौजवानों की प्रॉपर काउंसलिंग करें, उनको गाइड करें और ये समझाएं कि सही क्या है और गलत क्या है, और ड्रग्स के बिना जिंदगी कितनी खूबसूरत है, और उनके साथ प्यार से बात करके गले लगाकर उनको फिर से सही ट्रैक पे लाएं, ताकि वो हमारी सोसाइटी में हमारे साथ एक बार फिर से सर उठा के इज्जत की जिंदगी जिएं। लेट्स डू इट टुगेदर, लेट अस प्रूव इट टुगेदर दैट वी आर responsible citizens of our society. Let us say hi to life and bye to drugs.
1: Hum hai team Radio Chunar 90.4 FM and we care for you.

Chinar Beats with Harshadeva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: বেবেই যাবে।
1: ওকে,
0: তোমারই মেজর লগতা রুম মে রে গে।

0: साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464 1-800-180-7178 1-800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 जय बाबा बर्फानी।
1: कोक स्टूडियो भारत, सब्सक्राइब नाउ।
2: तीनों हजरात मुख्तसर बात साहिबे मस्तन सुनो।

Chinar Beats with Harshadeva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: नमत है जिसके बगैर हम अपनी जिंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकते। दुनिया का सिर्फ 3% पानी ही पीने के लायक है, और इसके बावजूद भी क्या हम पानी का सही इस्तेमाल करते हैं? कुदरती आबी वसाइल हम सब के लिए बहुत बड़ी देन है, और इनको आलूदा होने से बचाना और फ्यूचर जनरेशंस के लिए ये दौलत महफूज रखना हमारा फर्ज है। पानी बचाना सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बल्कि एक नेसेसिटी है। पानी का सही इस्तेमाल करना, बारिश का पानी जमा करना और बाकी लोगों को पानी की बचत करने के लिए एनकरेज करना वक्त की अहम जरूरत है। आइए हम पानी का सही इस्तेमाल करके अपने आने वाले कल को महफूज बनाएं, क्योंकि जल ही कल है, और कल के लिए सिर्फ प्यास नहीं पानी भी रखिए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।
2: दिल को
3: करार आ जाए
2: जब भी आए
3: सुहानी शाम,
2: दबी यादें महक जाए
3: जब भी आए
2: सुहानी शाम।
3: सुनिए सुहानी शाम
2: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
3: 90.4 FM।

दीवाने हैं, एक शम्मा दो परवाने हैं, एक हसीना और दो दीवाने हैं, लेकिन एक है हीरो और एक है जीरो। अब आप ही बताइए कौन है हीरो और कौन है

0: रेडियो चिनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: Why not? You wanna be top of the pops?

0: दिल को करार आ जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: दबी यादें महक जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
0: 90.4
1: एफएम।
2: स्वच्छ भारत अभियान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा इनिशिएटिव जो एक मिशन

0: नहीं बल्कि एक इमोशन है। सफाई और साफ रहना हर एक को पसंद है और हम अपने घरों को साफ रखते रखते अपने माहौल को इतना गंदा कर देते हैं कि फिर हमें खुद ही शर्मिंदगी होती है। म्युनिसिपैलिटीज और सफाई कर्मचारी हर दिन अपने हाथों से हमारी डाली हुई गंदगी को साफ करते हैं ताकि हम एक साफ माहौल में सांस ले सके। कितना अच्छा होता कि अगर हम इन म्युनिसिपैलिटीज और सरकारी इदारों के साथ अपने माहौल को साफ सुथरा रखने में कोऑपरेट करते और इस बात का सबूत देते दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ आवर सोसाइटी। तो आइए स्वच्छ भारत मिशन में हम अपना योगदान देकर इस मिशन को कामयाब बनाएं, क्योंकि स्वच्छता ही सेवा है। हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।
1: दिल को
2: करार आ जाए
1: जब भी आए
2: सुहानी शाम,
1: दबी यादें महक जाए
2: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
2: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
2: 90.4 FM।

0: कुछ नहीं चलेगा।
1: अरे अरे लेकिन लेकिन मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, क्या क्या करती हो? अच्छा अच्छा सुनो, एक बात एक बात, लेकिन एक बात

0: बता दूं?
1: हाँ,
0: वो यहीं पर।
1: यहीं है?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दूं बस समझ जाओ।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: रेडियो चुनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: दिल को
2: करार आ जाए
1: जब भी आए
2: सुहानी शाम,
1: दबी यादें महक जाए
2: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
2: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चुनार
2: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

तमाशा दिखाते हैं, गिरते हैं, लड़खड़ाते हैं, शोर मचाते हैं, उनको तो आप कुछ नहीं कहते, मगर मगर

जिगर, चिंग, आराम, राती, सुबह, दोपहर और शाम, छीन ले जाते हैं और आप चुरा लेते हैं, सामने लूटते हैं और आप बोल नहीं पाते हैं, देखो ना दर्द, ठेस और जख्म दे जाते हैं, तो आप कुछ नहीं कहते हैं।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम। दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।

0: अच्छा कुछ नहीं चलेगा।
1: अरे अरे लेकिन लेकिन मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, क्या क्या करती हो? अच्छा अच्छा सुनो एक बात, एक बात लेकिन एक बात।

0: दादू वो यहीं पर
1: यहीं है।
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

0: आप जानती हैं हम क्या गा रहे हैं?
1: मैं इतना भी नहीं समझूंगी, आप ही ने सरगम सिखा रहे थे।
0: आपको तो नहीं सिखा रहा हूँ, आपने तो अपने बाबूजी से सीखा होगा। हाँ तो कहाँ तक पहुंचे थे हम?
1: पंचम तक।
0: कैसे? कहिए ना।
2: सा सा रे ग म प म ग म प म रे म।

0: ओ गुजरिया ओए होए होए ओ जाने सारी नगरिया
1: आके सीधी लगी दिल पे जैसे कतरिया ओ सवरिया।

0: आए करार हो गोरी हो गोरी हो गोरी बढ़ के बुधन तीर भी टक्कर क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूं न आए करार
1: हटो जाओ ना बनाओ हटो जाओ हाय हाय ना बनाओ हाय हाय।

0: पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़ हो गोरी, ओ नटखट ओ खटपट ओ पनघट ओ झटपट। पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़।
1: तोरे नैना ओ मीठे बहना, ओ तोरे नैना हाय हाय मीठे बहना।

0: ये साहब माना जनाब ने पुकारा नहीं, क्या मेरा साथ भी गवारा नहीं। मुक्तम में बन के चल दिए तन के, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं।
1: हम थे वो थी, वो थी हम थे,
2: हम थे वो थी और समा रंगीन, समझ गए ना रा रा रा रा। जाते थे जापान पहुंच गए चीन, समझ गए ना। हे याने याने याने प्यार हो गए।

खोया मैं कैसे उसकी बातों में, कहता हूँ दम तो लेने दो। हाँ हाँ हाँ खोई वो कैसे मेरी बातों में, कहता हूँ दम तो लेने दो। हाँ हाँ हाँ क्या क्या कह डाला आँखों आँखों में, कहता हूँ दम तो लेने दो। हाँ

0: हम थे वो थी और समा रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो गया।
1: ओ मन्नू तेरा हुआ अब मेरा क्या होगा, मन्नू तेरा हुआ अब मेरा क्या होगा।

धीरे मैंने खींचा, आ हा हा, घबराहट में फिर अपना अपना हाथ उसने खींचा, मैंने खींचा, आ हा हा। हम थे वो थी और समा रंगीन, समझ गए ना, जाते थे जापान, पहुंच गए चीन, समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो गया। बाजू।

0: ही है।
1: ए, क्या भला तो क्या बुरा, कामयाबी में जिंदगी है। बोलो।
0: सौ बातों की एक बात यही है।
1: क्या भला तो क्या बुरा, कामयाबी में जिंदगी है।

0: यूं ही साथी।
1: ओए बंदी मुट्ठी लाख की और
2: रेडियो चुनाव की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: ओए बंदी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की।
0: मुश्किल

0: जो समझाए उसी की मची धूम, आ जो समझाए उसी की मची धूम,
1: जो समझा उसी की मची धूम, जो समझा उसी की मची धूम,
0: बाजू

0: दिल एक जान है हम तुम, जमाना क्या कहेगा।
1: हाँ हाँ छोड़ दो अचल, जमाना क्या कहेगा।
0: हाँ हाँ हाँ इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा।

यहीं पे तुमको जन्म मिला है, यहीं पे तुम्हारा दम निकलेगा। देख लेना एक दिन सारी दुनिया का आसमान कम निकलेगा।

इसके हर मोड़ पे एक नई कहानी, एक नया किस्सा है। पढ़ाओ दर पढ़ाओ, जिंदगी का सफर ही कुछ ऐसा है।

0: है।
1: गुजर बसर अब दिन रात उसके दिल में मेरा है, खबर ये भी ना रहा क्या उसका क्या मेरा है। करवटें लूं तो आहिस्ता ही पलटता हूँ, करवटें लूं तो आहिस्ता ही पलटता हूँ, क्योंकि खुशी हो या दर्द अब ये सब कुछ मेरा है।

रंग खुशबू फूल महक ना ही देखी कोई सज धज, सूखे पत्ते सी भटक रही है जिंदगी जैसे कोरा कागज।